इन मौसम जस परा रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अम चिंगों नो वाला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मो अब्बा पाप दे मनो के अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामों ने